0: तिरुनेलवेली जिले के पापनासन थार मंदिर में यही होता है।
1: नदी भले ही पवित्र मानी जाती है लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। श्रद्धालु अक्सर अपने कपड़े, दूध के डिब्बे और पूजा पाठ की दूसरी सामग्रियां नदी में फेंक देते हैं। ये एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता का विषय है और तमिलनाडु के 4 जिलों को पीने का पानी यहीं से जाता है।
0: वॉलंटियरों ने फेंकी चीजों को जमा करने के लिए टोकरी लगा दी है लेकिन कोई फायदा नहीं, कपड़े फिर भी नदी में पहुंच जाते हैं। भास्कर जैसे वॉलंटियर पानी से तमाम चीजें नियमित रूप से निकालते रहते हैं।
2: हम लोग चट्टानों और जड़ों से कपड़े हटाते हैं लेकिन 2 दिन में ही नदी फिर से भर जाती है।
0: इन वॉलंटियरों का काम खतरनाक होता है और उसकी वजह सिर्फ तेज बहाव नहीं है।
2: लोग अक्सर अपने मृत परिजनों की फ्रेम लगी तस्वीरें नदी में फेंक देते हैं और चट्टान से टकराकर कांच टूट जाता है। सफाई के दौरान हमें टूटे कांच से चोट लग जाती है। मुझे काफी चोटें लगी हैं क्योंकि 15 साल हो गए ये काम करते हुए, लेकिन नदियों से कपड़ों को हटाने का हमारा काम जारी है।
0: ये लोग नदी से हर हफ्ते कामकाजी दिनों में करीब 20 बंडल कपड़े निकालते हैं। वीकेंड में वॉलंटियरों की मदद से ये संख्या 50 हो जाती है। एक गैर सरकारी संगठन की देखरेख में कपड़ों की धुलाई के बाद उन्हें नदी किनारे सुखाने के लिए लाया जाता है, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है।
1: काट कर छोटे छोटे टुकड़े करने से पहले जमा किए कपड़ों को श्रेणियों में छांटा जाता है, जैसे तौलिए अलग, लुंगी अलग और दूसरे सॉफ्ट फैब्रिक अलग। हमें रोजाना करीब 50 किलो कपड़े मिलते हैं, महीने में करीब 1500 किलो। नदी में छूटा रह गया तो ये कचरा पानी को बुरी तरह दूषित कर सकता है। उनकी रिसाइकलिंग कर फ्लोर मैट्स बनाते हैं और बड़े पैमाने पर प्रदूषण को रोका जाता है। नदी के तल की सफाई होती है और कई महिलाओं को काम मिलता है।
0: वापस नदी की ओर चलते हैं। पिछले साल करीब 94 टन कचरा मंदिर के पास के पानी से निकाला गया था। पिछले दशक में आंकड़ा 1300 टन हो गया। पर्यावरण कार्यकर्ता मूर्ति बताते हैं कि पानी से कपड़े निकालना उनके और उनके सहयोगियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर वो कपड़े नदी के तल में पड़े रह जाते हैं और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया को पनपने का अवसर मिलता है।
3: अगर आप गर्मियों में अस्पतालों का रिकॉर्ड देखें तो बहुत सी बीमारियां पानी से जुड़ी हैं। सरकार और समाजसेवी संगठनों की कोशिशों के बावजूद इलाके में पानी को पूरी तरह शुद्ध करना बड़ा ही विकट काम है।
0: लोगों की नासमझी से हो रही समस्याओं से न सिर्फ पर्यावरणविद परेशान हैं, बल्कि प्रकृति और विशेषकर नदी में जीव जंतुओं की बसाहट पर भी असर पड़ रहा है।
4: सो ये सिगा भी कुदरत नू या प्रकृति नू आपा किदा गंद पाने हैं, ते कुछ लोकी जेड़े अपना काम करके उन्हें बैटर करने की कोशिश करते हैं। सो आई होप भी ये जेड़ा काम है होर ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਗੰਦ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੰਦ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪ ਆਏ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, फिर इस तो बाद
5: मोबाइल चार्ज नहीं कर पाते हैं। कई बार तो जो हमारी बारिश होती है उसमें दो दो तीन तीन दिन तक ही लाइट नहीं
6: आती।
7: कुछ साल पहले जब दुनिया में चीजें अचानक बदल गईं, तो हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए जीवन
8: और आप सबको पता है कि सरगोधा तो है
9: मॉडर्न के उस साइड।

0: कहाँ है मैच?
1: चांद पे।
0: चांद पे मैच है? अच्छा मून पे है, ठीक है।
1: गए रहो कभी मून?
0: मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे।

0: 웹툰이 뭐라도?
1: पता क्या हो गया मुझे मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा
0: मगर हमारी शादी हो गई तो फिर भी नहीं करेंगे उसे

0: नज़्म शायर की जुबानी अच्छी लगती है।
1: शहर है, लोग है, भीड़ है, काम है।
2: जाओ यहाँ से।
3: मैं नहीं जा रहा। कर लो जो करना है। मैंने कहा था बंटवारा करो, और ये जगह हिंदुस्तान में है, नए मुल्क में, कैसे बता?
1: मैं भी हूँ, वो नहीं, वो
4: पंजाब दो हिस्सों में स्प्लिट हो गए।
5: लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में। वो बता भी रहे हैं हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही।
6: समझ में कैसे आएंगे? ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी।
1: वो नहीं।
7: ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।

0: ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरा 94.7 एफएम।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.

0: 3 ਵਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀਆਂ।
1: ਓਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸਮੋਸਾ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
2: ਸਮੋਸਾ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਰੌਂਠੇ, ਲੰਚ ਐਂਡ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਫਿਸ਼ ਟਿੱਕਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਮੋਸਾ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ, ਓਪਨ 24 hours, ਯੂਨਿਟ 2154-43-10104, ਐਵੇਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਕੈਲਗਰੀ। ਕਾਲ 403-460-6661
3: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान, ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुजो, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
4: सलाम नमस्ते, सत श्रीकाल, आदाब, यारी मदद, मैं आपको होस्ट जलाल आपकी खिदमत हाजिर, आप तो सुन रहे हैं एन देख रहे हैं। सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM। आज यह मंगल का दिन, ट्यूजडे का दिन है, तो आज स्पेशल सेगमेंट जो आप एवरी ट्यूजडे सुनते हैं 8 to 9 PM, सलाम नमस्ते कैलगरी आपकी खिदमत में हाजिर ओनली ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM। आज भी हमारे पास जो दो गेस्ट होंगे फॉर द फर्स्ट जो हमारा सेगमेंट है टिल 8:30 है, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही अच्छी टीम यहाँ पर मौजूद है, प्लस उसके बाद जो हमारी दूसरी टीम, जो हमारे दूसरे गेस्ट यहाँ पर आ जाएंगे अंचल। लेकिन सबसे पहले सलमा जी भी यहाँ पर मौजूद। हेलो सलमा जी, कैसे हैं?
5: हेलो जलाल, कैसे हो? सब खैरियत है, थैंक यू। सबसे पहले हमारे सुनने वालों और देखने वालों को सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, याली मदद एंड अ ब्यूटीफुल इवनिंग। उम्मीद है कि आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमारा हफ्ता भी बहुत अच्छा गया, और जैसे हस्बे मामूल आज मंगल का दिन है और हम आपके साथ रहेंगे 8 to 9 PM तक। और हमारा एक सेगमेंट है वो उनके, हमारे पास गेस्ट आ चुके हुए हैं, वो बात करेंगे जागरण के बारे में, उनका इवेंट होने जा रहा है, तो उनके सब इवेंट प्लानिंग वाले लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे हमारी मुलाकात होगी। और एक दो लोग नए भी हैं जो उसमें कभी भी स्टूडियो में कभी आए नहीं है हमारे पास, तो चलें अब हम सबसे मुलाकात करते हैं और फिर इनसे बातें करते हैं कि ये किस सिलसिले में यहाँ पर आए हैं।
4: जी हाँ, थैंक यू सलमा जी। जून की 13 तारीख को जागरण होने जा रहा है, इट्स नथिंग न्यू फॉर दिस जो है टीम है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त राकेश जी जो जिनको हम रॉक जसवाली बोलते हैं, तो उनकी टीम यहाँ पर मौजूद इंक्लूडिंग हिम, बट आई विल गो फ्रॉम माय राइट टू लेफ्ट। वो अपना अपना सब सारे जिनकी टीम मेंबर्स हैं इनका अपना अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे। विल स्टार्ट विथ वन एंड ओनली हमारे कैलगरी की चहीती बीना जी यहाँ पर मौजूद। हेलो बीना जी, कैसी हो? गुड टू सी यू अगेन।
6: मैं बहुत अच्छी हूँ, ऑसम, एंड हाउ आर यू ऑल?
4: अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कपड़े और आपके फ्रेम दोनों मैच हो रहे हैं आज, तो जूते मैंने नहीं देखे अभी तक
6: मेरी।
4: अच्छा, एरिंग भी मैच हो रही है, अरे क्या बात है। राकेश जी की बात ही हो रही, टीम मेंबर्स की बात हो रही है।
6: राकेश जी के लिए हम आए हैं ये जागरण के लिए।
4: जी जी जी, बिल्कुल।
6: हमें ड्रेसअप करना चाहिए और माता जी का कलर ही लाल है।
5: लाल पहना है।
6: सो एवरीबडी इज मोर देन वेलकम टू अवर जागरण। अवर रोकेश रॉक जसवाल जी भी यहाँ पर है।
4: जी जी।
6: और हम आपको बताएंगे क्या क्या डिटेल्स है।
4: परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू। फिर बीना जी के बगल में बैठी, आज हमने जो फिल्म स्टार को भी यहाँ पर बुलाया, दीपिका को भी यहाँ पर बुलाया हमने। आई होप यू डोंट माइंड माय जोक्स अराउंड।
6: नो, इट्स परफेक्टली
4: फाइन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक द आइस हियर, ताकि आप सबको किसी को टेंशन नहीं हो यहाँ पर। मैना, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
6: थैंक यू फॉर हैविंग अस।
4: थैंक यू। तो उनके बराबर में जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त, वन एंड ओनली राकेश जी। हेलो रॉक, मैं आपको रॉक बोलूं कि राकेश बोलूं?
7: जो आपका मन करे वो आप बोल सकते हो।
4: दिल से दिल को राह,
7: बस
4: जो भी आप, जो
7: अभी
4: भी आवाज
7: तो नाम की जरूरत ही नहीं है, जैसा एक दूसरे के साथ नाता बन चुका है।
4: जी जी जी जी, राकेश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन।
7: थैंक यू। तो बस आपने हमें मौका दिया फिर दोबारा मैसेज कन्वे करने का सभी के साथ।
4: जी,
7: तो पहले तो और आपके रेडियो का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
4: यू वेलकम सर। फिर आपके बगल में कौन बैठे हैं? हमारे लिए नए हैं।

0: कमल ढिल्लो हैं, ये हमारे साथ वॉलंटियर में पूरा काम करते हैं, आप बोल सकते हो।
1: हेलो कमल जी, कैसे हैं?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं?
1: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन।
3: आप आए हमारे स्टूडियो में, दैट्स वेरी नाइस।
2: माय प्लेजर जी, माय प्लेजर। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो जैक रन हो रहा है जून 13 को हो रहा है, तो आप जितने भी है हमारे भाई बहन सभी आए, राइट? तो
4: और ये फ्री एंट्री
3: वी
4: वांट, एंड इट्स अ देरा बैंक्वेट हॉल, एंड इट्स अ लाइक बिग ह्यूज प्लेस, सो वी वांट एवरी कैलगरियन टू कम एंड यू नो सपोर्ट अस।
3: आपका कितने बजे शुरू होगा?
1: 7 PM जो है राकेश, जो है अपना राकेश भाई, माशाल्लाह आप जो एवरी ईयर करते हो, अपना जो ऊपर वाले की मेहरबानी से आप पर बहुत ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं। ये काम इजी नहीं है करना, जागरण हो, कुछ भी करना हो, कैलगरी को कुछ भी एंटरटेनमेंट देना हो, माशाल्लाह ऑन द बॉलीवुड साइड वो भी आप करते हैं, तो जागरण का आपकी टीम बढ़ रही है एवरी ईयर।
0: ये माता रानी की कृपा है
1: जी।
0: हम लोग कुछ भी हम नहीं करते, ये एक शक्ति है जो हमसे करवाती है सारा कुछ। और हम कभी भी किसी को ये नहीं बोलते कि आप आके सेवा करो, लोग खुद आते हैं। तो ये माता रानी का आशीर्वाद है कि हर साल हर बंदे को मौका मिलता है। तो यहाँ पे ये नहीं है, कोई ऐसी ही नहीं है कि कोई वो फिक्स टीम है, हर एक बंदे के पास चॉइस है कौन सा काम किसने कब करवाना है, ये हम नहीं डिसाइड करते, ये माता रानी करती।
1: जी जी।
0: तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी अगर सीधा सीधा बोलें तो हमें ऑलमोस्ट 14 ईयर हो गया अभी,
1: माशाल्लाह।
0: तो 14 ईयर हो गए, तो जिसमें 2 साल ही थे, जो आप लोगों को मालूम है कोविड था जब हम नहीं कर पाए
1: जी।
0: तो ये माता रानी की कृपा है, आर्टिस्ट माता रानी ने अपने आप चुन चुन के लिए हमसे।
1: yes.
0: हम तो मतलब अगर नाम मैं ढूंढना चाहूंगा, मेरे पास तो लिस्ट है, मैं इस बार लिख के भी लाया हूँ कि अगर आपको कितने आर्टिस्ट को हम लोग लेके आए, जिसमें सबसे पहले अनुराधा पौडवाल जी हैं,
1: yes.
0: कविता पौडवाल जी हैं, मोहित चोपड़ा है, नितिन कुमार है, मनीत सिंह है, संदीप सूद जी है, विपिन सचदेवा है, इशिता विश्वकर्मा है, रेखा रॉय है और ऐश्वर्या आनंद है। और आपको इस साल बहुत और लाइंस मिलेंगी जिनके बारे में हम आज बात करेंगे।
3: जी, वो तो हम देख रहे हैं कि एक नया चेहरा आया है आपके साथ, तो आप बताइए कि आपका इसमें क्या रोल है?
5: हम सभी इधर वॉलंटियर्स ही हैं, और अच्छा, जितना जो जैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है हम लोग सब वैसे कर रहे हैं।
3: अच्छा।
5: ऐसा कुछ हमने रोल डिविजन नहीं किया, अपनी अपनी श्रद्धा है और अपना जितना जिसका जो बन पा रहा है वो उतना कंट्रीब्यूट कर रहा है।
3: दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। तो ये आपका 13 June को 7 PM शुरू होगा, सैटरडे है, और इसका कोई टिकट नहीं है, फ्री एंट्री है। मुझे पता है आप लोगों का हमेशा सक्सेसफुल जाता है, आप हम लोग हमारे पास आते हैं और हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आप ये बताएं, इस साल आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं कि इसमें कुछ और चेंजेस आए हैं, कुछ ऐसा कुछ है इस दफा?
0: अगर मैं पहले सबसे पहले बोलूं, इस बार हमारा जो हॉल है वो बहुत बड़ा है।
3: जी जी।
0: जो आपने डेरा बैंक्वेट हॉल का नाम सुना होगा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लोगों से ये परेशानी आती थी कि एक तो पार्किंग इशू होता था और दूसरा हमारे पास लोग, आपको मालूम है यहाँ पे हमारा इजिली एक्सपेक्टेड 8,000 पीपल हो जाता है।
3: वाओ।
0: तो हम लोग जैसे इसमें खाना भी देना होता है, माता रानी का भंडारा जो बोलते हैं हम जिसको, तो उसमें हमें थोड़ी सी परेशानी, लाइनअप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमने कुछ सोचा कि हमें क्यों नहीं कुछ बड़ा किया जाए, तो बड़े को देखते हुए ही हमने इस बैंक्वेट हॉल को किया है। बहुत अच्छी स्पेस है, बहुत अच्छी पार्किंग है, हम चाहते हैं कि लोग आएं, अपने परिवार के साथ बैठें और माता जी का आशीर्वाद लें और भजन का गुणगान करें, और मतलब श्रद्धा अपनी पूरी, जितना टाइम है आपके पास, सैटरडे है आपके पास, कल नेक्स्ट डे है कि आप आराम से जाके सो सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो। ये स्पेशली सैटरडे रखने का रीजन यही हॉल का यही है, क्योंकि लोग फ्राइडे में, हम ट्राई करते थे फ्राइडे में, क्या बात है कि लोग काम से थके आते हैं तो इतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि हर बंदा थोड़ी रेस्ट मांगता है। तो रेस्ट के बाद में अभी सैटरडे है, तो मैं बोलूंगा ये माता रानी ने खुद ही मांगा है। मैं तो शायद सोच रहा था शायद फ्राइडे होगा इस साल, लेकिन उन्होंने पकड़ के मुझे बोला कि नहीं, तो इस बार तो सैटरडे ही होगा।
3: That's so amazing.
0: तो ये चीजें हैं, स्पेस बड़ी है, खाना भी अंदर होगा हमारे।

0: पास जूतों का इंतजाम भी बाहर है।
1: अच्छा,
0: और हम खाने का बहुत इंतजाम है। ये माता रानी की कृपा है कि हर बार हमें इसमें बहुत बहुत बढ़ता जा रहा है हर साल। हर चीज है, बच्चों के हिसाब से भी बनाई जाती है, बड़ों के हिसाब से भी बनाई जाती है, और जैसा भंडारा होना चाहिए उसको ध्यान के रख के ही बनाया जाता है सब कुछ।
2: नाइस। तो बिना जी, लाइक जो इज दिस जो है अपना फर्स्ट टाइम विद दिस द ग्रुप?
1: नो,
2: पहले भी किया है।
1: मैंने बहुत बार पहले किया है, मैं तो इनको ऑलमोस्ट 20 इयर्स से जानती हूं। माशाल्लाह।
2: तो आपने क्या क्या देखा अभी तक इवेंट में चेंजेस जिस तरह बढ़ता गया एवरी ईयर?
1: वेल, वी एक्चुअली स्टार्टेड इन अ स्मॉलर स्केल एट द मंदिर। एवरी ट्यूसडे वी वर डूइंग द भंडारा फॉर फ्री फॉर ऑलमोस्ट 400 to 500 पीपल every Tuesday.
2: Nice.
1: This was in 2006 or 7 11. Sorry, I'm going way further. And then I've dealt with him number of times with my other events as well.
2: Mm-hmm.
1: He's been my sponsor. He's always very generous. His wife is even nicer. So, we know the family for quite long.
2: मैंने उनसे जो है काफी बार कहा है कि आप क्यों नहीं आते उनके साथ, मतलब वो मुझे लाता ही नहीं कभी।
3: अगली बार वही आएगी।
2: मेरे पास यहाँ विटनेस भी है।
4: So, but how, like, it went on increasing from hundreds to thousands then?
1: We are expecting 10,000 people this time.
4: Wow.
1: So, if you can actually remove your shoes right in your car, that would be helpful for us.
4: Okay.
1: So, whoever's coming.
4: Okay.
1: And it's not too much to walk from the parking lot.
4: Uh-huh.
1: It's a big parking lot. So, it will be very comfortable parking and just walking without the shoes there. That would actually, Mata Rani aapko shraddha se aashirwad bhi degi. ठीक है ना। और इवेंट में राइड्स आपको चाहिए तो आपको राइड्स भी मिल जाएगी।
2: सो जस्ट
1: या कॉल अस एंड वी वुड गिव यू अ राइड।
4: Yeah, that's a great thing you're doing. Yeah, amazing. So it's this is this time, you know, you have got a really nice venue. That's because we're itna bada hai ki now it can accommodate, and that makes such a difference. That will really make a difference. Yeah.
0: ये आई थिंक बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे थोड़ा पेरेंट्स तंग हो जाते हैं ना कि बच्चों को पकड़ के वहीं छोटी जगह पे रखना। तो मुझे जो परेशानी सबसे बड़ी आती थी क्योंकि हम लोग लोगों को ना अपने हमारे इवेंट में देखा होगा तो हम लोग लोगों को बोलते थे स्क्वीज हो एक दूसरे के साथ। थोड़ा बड़ी मुश्किल आती थी क्योंकि लोग क्योंकि इतनी देर बैठना है, आपकी टांगे अकड़ जाती है नीचे बैठना है, तो हम लोग यूज टू नहीं है इतना, मतलब नीचे बैठने के। तो इसमें तो ये है कि आपको अगर सीनियर्स हैं, हाँ ये जरूर है कि हम लोग अरेंजमेंट लगाते हैं अराउंड द चेयर्स जो सीनियर्स नहीं बैठ सकते नीचे, हम उनके लिए हमेशा चेयर्स का इंतजाम करते हैं। तो इस कारण इट्स अराउंड 200 चेयर्स वी ऑलवेज अवेलेबल। तो जो लोग किसी तरह से हैंडीकैप है या वो नहीं बैठ सकते नीचे, तो उनके लिए ये अरेंजमेंट रहता है। बाकी तो बस यही है कि वेन्यू का तो जो है श्रद्धा है, यहाँ पे आप आओ, श्रद्धा लेके आओ, अपने बच्चों को दिखाओ कि कल्चर क्या है हमारा।
2: जी जी।
0: हमें अपने जो हमारे रूट्स है, हमने कैसे उनसे जुड़के रहना है।
2: जी बिल्कुल।
0: तो ये नहीं है कि ये यहाँ आए आपने खाना खाया। मैं तो पेरेंट्स को बोलता हूँ बच्चों को दिखाओ कि क्यों ये किया जाता है, किस लिए किया जाता है। हम गुणगान क्यों माता जी का करते हैं? माँ वर्ड बहुत बड़ा है जिससे हम लोग सारी ये सृष्टि सारी माँ से बनी हुई है।
2: जी बिल्कुल।
0: तो उनके बाद ही मतलब हम बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि क्योंकि हमें जो बचपन में सिखाया गया वो हमारे अंदर है, हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भी जितना हमारे पास जितनी नॉलेज है, हम चाहते हैं कि हमारा कल्चर बहुत रिच कल्चर से हम लोग हैं।
2: yes,
0: हमारे पास
2: बिल्कुल.
0: बहुत कुछ है लेकिन हम बांट नहीं पा रहे, बस हमारी कमी यही है।
4: बिल्कुल सही बोल रहा है। नहीं, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, बच्चों को भी मालूम होना चाहिए, बिकॉज वो कितनी इतना तो जाते नहीं है इंडिया, वो बॉर्न यहाँ पर हुए हैं, तो उनको ये सब कुछ दिखाना बहुत जरूरी है। नहीं, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब और आपका बहुत अच्छा जाता है हमेशा। इट गोज रियली वेल।
1: इफ यू हैव अ स्ट्रांग लीडर डूइंग दिस एवरी ईयर gets bigger and bigger and better, and we learn from it. And he's a good management.
2: Yeah, of course.
1: He manages a lot of businesses himself.
4: Yeah,
2: so, that's true. Yeah. That's true. Deepika, you are.

0: हेड ऑफ द वॉलंटियर्स ऐसा कुछ है कि यू आर पार्ट ऑफ द वॉलंटियर्स?
1: नहीं नहीं, सभी हेड हैं, सभी अपनी जिम्मेदारी खुद ही ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है.
0: तो नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि यू लर्न इफ समवन वांट्स टू जॉइन, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? आर यू गाइस स्टिल जो है टेकिंग द वॉलंटियर्स?
1: यस.
0: और वहां पे की ड्यूटीज क्या होगी? मेबी यू नो यू वांट टेक द माइक लाइक क्लोजर टू यू.
1: फॉर श्योर. सो ड्यूटीज ऐसा है कि अभी जो हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, जैसे बैंक्वेट हॉल हो चुका है, उसके बाद अभी हम खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं. उस दिन वेन्यू पे जैसे हमने रिक्वेस्ट किया है लोगों से कि आप अपना शूज गाड़ी में निकाल के आइए, बिकॉज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 10,000 पीपल, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज यू नो शूज ऑफ 10,000 पीपल. बट उसके बाद भी यू नो होता है कि कुछ लोग लेके आते हैं शूज, तो हमें उधर में वॉलंटियर चाहिए. फूड सर्विंग के लिए वॉलंटियर चाहिए, अंदर में हॉल मैनेजमेंट के लिए वॉलंटियर चाहिए. तो वॉलंटियर्स तो जितने हो उतने कम है, जितने हाथ होंगे उतनी ही मदद ज्यादा होगी और ही प्रोग्राम अच्छा होगा.
2: स्पीकिंग ऑफ दैट, वी एक्चुअली वॉन्ट वॉलंटियर्स टू कुक विथ अस, बिकॉज इट मेक्स सेंस व्हेन वी कुक ऑल टुगेदर. उसमें बरकत भी आती है और माता रानी का प्रसाद भी बहुत मीठा होता है.
1: हम लोग क्योंकि सात्विक खाना सर्व करते हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम कुछ खाना अपने आप से बनाएं. और हमारे पास ऑलरेडी कुछ वॉलंटियर्स हैं, पर और कुछ ज्यादा वॉलंटियर्स मिल जाएंगे तो बहुत मदद हो
0: जाएगी.
2: एंड टू एड ऑन टू इट, दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट एवरीबडीज हेल्प, एंड दिस इज लाइक अ बिग बजट program, so we would like your sponsorship.
0: Yes.
2: So whoever is listening and they know me for last 15 to 20 years in Calgary, so I never come and ask you for any money. I would really request if you can, whatever you can, big amount is better. So please come and call us. Our numbers are 403-827-2491. That is Ravinder Jaswalji's number, and also 403-836-4016. My number is 403-701-4660. So please call us, and we would like you to help us out. And e-transfer, you can do it at hysocietyofcalgary@gmail.com. That is again hysocietyofcalgary@gmail.com. So you can even e-transfer us whatever amount you want.
0: Any amount doesn't matter.
2: Any amount.
3: That's you know, कहते हैं एक कतरा डालो आप पूरा ocean बन जाता है, you know, कतरा कतरा मिलकर. So it could be anything, and you know it will help in so much.
2: And if people actually don't, it always comes from somewhere. Like Rakesh ji ko poocho kitna bada budget aap chalate hain,
3: please.
0: Kamal ji, of course, the doors open, and wo kitna thodi details aap de denge kya kitne baje khulega doors vagera? Khali apna mic le lena please. थैंक यू.
4: जो डोर से है वो 6:30 को ओपन हो जाएगा. 6:30 को ओपन हो जाएगा,
0: ठीक है.
4: तो उसके बाद इट विल गो अंटिल लाइक 4:00 इन द मॉर्निंग. तो सुबह की जो फर्स्ट किरण है, राइट, भी बोलते हैं कि वो मेडिटेशन के लिए बेस्ट होती है, राइट.
0: यस.
4: तो इसलिए वो सुबह की जो पहले सूरज की किरण है, राइट
0: जी,
4: वो पीपल कैन मेडिटेट ड्यूरिंग दैट टाइम.
0: वेरी वेल. यू नो राकेश भाई, ये कितना कोइंसिडेंट में तो नहीं बोलूंगा कि इतने रिलीजन है जितना हम सुनते हैं, हमारे पंजाबी भाई हैं, हम हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे इनका सुबह 4 बजे का टाइम बहुत ही बड़ा सबके लिए, वो मेडिटेशन के लिए ही रखते हैं
3: सबके लिए.
0: और ये बड़ा इत्तेफाक सब में सेम है.
3: सब में
5: सेम. उसका रीजन ये है ना, देखो आप धर्म जितने मर्जी ले लो, सृष्टि एक ही है.
0: यस आई नो,
5: भगवान एक ही है
0: जी.
5: तो हम तभी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने दिन रात बनाया है. तो इसीलिए जो हमारा सुबह में आके गुणगान करना है, फर्स्ट किरण में, जैसे हम लोग इसमें बोलते हैं हमारी आरती होती है
0: जी.
5: आरती का टाइम इसीलिए बोला जाता है, जो पहली फर्स्ट किरण से हम लोग आरती शुरू करके खत्म करते हैं
0: जी.
5: तो उसमें क्या होता है कि हमें ये बोला, जो बचपन से बताया गया कि जो सुबह का टाइम है वो भगवान के बहुत पास का टाइम है। आप किसी भी धर्म में ले लीजिए, किसी भी धर्म में, आप कोई भी धर्म को

0: खा लीजिए,
1: क्योंकि
0: यही सिखाया गया. तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि भगवान बाकी में एक है. देखो ये चीज तो एक ही आ रही है ना.
2: एग्जैक्टली.
0: तो बताने का बस यही है कि बाकी गुणगान है. हर धर्म यही सिखाता है कि हम लोगों को प्रेम बांटना एक दूसरे से. ये कुछ नहीं है कि यहाँ से सब चले जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं है. सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना कर्मा कर रहे हैं और जाने की तैयारी में रहते हैं. आना है, जाना है. बस यही ध्यान रखो कि जितना टाइम आप देके जाओ, सबके साथ खुशी खुशी देके जाओ, और जितना अच्छा दे सकते हो या कुछ छोड़ के जा सकते हो कि कुछ लोग आपको याद करें. बस इतना करने की जरूरत है.
2: बिल्कुल.
0: और अच्छा करके याद करें, बुरा करके याद नहीं करें. बस यही है.
2: तो राकेश भाई, हमारे पास जो है खाली अभी जो है 3 मिनट रह गए. अच्छा, आर्टिस्ट कौन कौन आ रहे हैं इस बार, प्लीज?
0: जी बोलिए.
3: मैं एक्चुअली दो बातें बताना चाहूंगी आर्टिस्ट के बारे में भी. तो ब्रह्म मुहूर्त का तो सिग्निफिकेंस आई थिंक हम सब लोग जानते हैं, और आजकल साइंटिस्ट्स भी एक्नॉलेज करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से और सूरज का फर्स्ट किरण लेने से, 10 मिनट सूरज में रहने से आपके ब्रेन में और पूरी बॉडी में कितने चेंजेस होते हैं. सो इट्स ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन. दैट सेड, ये खाली एक रिलीजियस इवेंट नहीं है, इसमें सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट भी है. तो जागरण जो वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जागरण. जागरण इज नॉट अ हिंदी वर्ड, विच बेसिकली मीन्स पूरी रात जागना. एंड जागना इज नॉट सिम्बॉलिक कि आप सोए नहीं. जागना ऑल्सो इज सिम्बॉलिक टू दैट you basically wake up from your ignorance, enlighten yourself.
2: Yeah, that's right.
3: You know, and that is what this symbolizes.
1: Yeah.
3: And jo Ma Durga hai, she is a feminine power who basically took birth. महिषासुर जो थे, डीमन जो थे, उनके साथ में उनको मारने के लिए इन्होंने अपना अवतार लिया था. एंड शी इज सपोज टू हैव द कम्बाइंड पावर्स ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा. एंड बिकॉज ये फेमिनिन पावर को दिखाता है, सो इन अ वे दिस ऑल्सो सिम्बलाइजेस कि हमें अपनी सोसाइटी में लेडीज की, गर्ल्स की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एंड जब हम नव दुर्गा सेलिब्रेट करते हैं, उसके अंदर भी हम अपने छोटे जो कन्याएं बोलते हैं, कन्या पूजन करते हैं, लेडीज की रिस्पेक्ट करते हैं. आई थिंक दिस इज सो दिस you know celebration also carries a very important social aspect and a social message.
2: Well, both important.
3: Exactly.
1: So good to know. और कौन सिंगर्स
3: हैं,
1: नाम बताइए.
3: सो सिंगर्स जो हम जो आ रहे हैं वो है विनीत सिंह एंड अनीता भट्ट. विनीत सिंह जो है ये आई थिंक 1500 से ज्यादा शो कर चुके हैं. ही हैज बीन पार्ट ऑफ सारे गामा, इंडियन आइडल एंड सेवरल अदर यू नो कॉन्टेस्ट. एंड अनीता भट्ट जो है वो उनकी भी बहुत सारी लाइव परफॉर्मेंसेज हुई है. दोनों ही सिंगर्स जो है बॉलीवुड के भी बहुत फेमस इन्होंने सॉन्ग्स गाए हैं. सो दे आर वेरी वेल नोन नेम्स इन द इंडस्ट्री.
2: चलो, वेरी गुड. Guys, thank you so much.
1: Just say it. One more thing. We are also calling volunteers between 5 years and 12 years ki jo ladkiyan hain, unko hum 9 divine forms of Ma Durga ka avatar, Nav Durga ka avatar hum banana cha rahe hain. To hume unke liye volunteers chahiye. So if you have a girl in your ages 5 to 12. So please come and call us for that.
3: Thank you so much. And we'll help you with dressing part. So don't worry about that. You just have to volunteer.
2: You just have to volunteer. Okay. I'm sure a lot of people, a lot of kids.
0: Last thing.
2: Yes, बोलो.
0: इसके साथ में पूरा live band आ रहा है. वो बॉम्बे से जैसे हर साल आता है.
2: जी जी जी.
0: तो हम ये नहीं ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि ये बहुत तैयारी से काम होता है. It's a big budget program. तो हम लोग ये इसमें मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलूं 60 to 70,000 का ये बजट होता है. तो इसके अंदर में क्योंकि 10,000 लोगों को खाना देना और अरेंजमेंट्स, हॉल्स, आपको मालूम है कितना एक्सपेंसेस है. तो सबको आर्टिस्ट को होटल्स में रखना, सब कुछ करना, इट्स नॉट दैट इजी. तो आप बॉलीवुड में आप तो काम कर चुके हो तो आपको मालूम है. सो दैट्स मैं यही बोलूंगा कि आप सब आइए. पहले तो ये नहीं अकेला, हम मनी की बात नहीं करना चाह रहे. प्लीज आप आइए, तन मन धन किसी तरह से भी आप सेवा कर सकते हो. आइए, ये नहीं है कि आपको जरूरी पैसा ही देना है. अगर आप आके वॉलंटियर करिए, अपने बच्चों को दिखाइए और सबको मिलजुल के बोलो कि यहाँ पे हेट खत्म करो. क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतनी दूर से आए हैं, कल्चर लेके आए हैं, तो कल्चर बढ़ाना है. बस
2: ओनली फॉर वन कमेंट, कोई भी आ सकता है.
0: एवरीबॉडी वेलकम है. क्योंकि आप आइए तो सही, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ये तो धर्म ही है. हमारा धर्म असल में हिंदुइज्म तो बना ही एकता के लिए है शुरू से. थैंक यू
1: सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड आई एम एंड वी प्रे

0: ਸੀ ਲੈ ਦੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ 403-607-4408
1: ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ 403-607-4208 ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ
2: ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੀ ਨੂੰ ਬਸ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਲਈ ਜਾਇਓ ਵੀਰੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
3: ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਐਲਟਰ ਜੱਗੀ ਤੇ ਲੋਹਰਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੱਗੀ ਤੇ ਲੋ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ
2: ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਐਲਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ
4: 403-614-6216
5: और फिर हमारे जो है मोबाइल मॉडल स्पेशलिस्ट जो है रूबीना कासिम इफ यू लुकिंग फॉर एनी मॉडल शी वर्क्स फॉर टीडी बैंक यू कैन कॉल हर 403-870-7069 हमजा बट फ्रॉम द बैंक बट कढ़ाई जो है बैंकुट हॉल इफ यू हैव एनी लाइक एनी एनिवर्सरी एनी जो है बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी ऑफ कोर्स और एनी इवेंट यू कैन कॉल हमजा भाई एट 587-352-0094 नसीम ज्वेलर्स इन कैलगरी अगर आपको पाकिस्तानी गोल्ड की जो है डिजाइन चाहिए गुल खान साहब तो यू कैन गो टू नसीम ज्वेलर्स हमारे शहजाद मियां साहब वी कैन गेट यू द पाकिस्तानी गोल्ड डिजाइन इन कैलगरी 825-987-5000 इनका नंबर है और फिर आयज भाई बशीर अगर आपको कोई जो है चश्मे चाहिए जो या तो फिर कॉन्टेक्ट लेंस चाहिए इनका फोन नंबर है 403-720-3937 एक जो है अपना कैलगरी में बहुत ही अच्छा जो है फंडरेज होने जा रहा है दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इमरान खान जो कि हमारे पाकिस्तान के फॉर्मर जो है प्राइम मिनिस्टर तो उनकी एक जो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का उन्होंने जो अपना बनवाई थी बनाई है नमल यूनिवर्सिटी के नाम से तो उनका फंडरेजर एवरी ईयर होता है तो इस बार भी होने जा रहा है जून की 6 तारीख को होने जा रहा है एट मैनुअल बैंकुट हॉल तो इनके टीम मेंबर्स यहां पर मौजूद है वन एंड ओनली हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त गुल खान साहब यहां पर मौजूद है जो कि ही इज नॉट अ न्यू टू अवर शो गुल साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप
6: जी वालेकुम सलाम और आपके देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम
4: जी
6: आज मैं और मेरे साथ जो है नौशीन जो है
4: जी नौशीन जी जी
6: दोनों जो है नमल की तरफ से यहाँ पे आए हैं जो ये फंड रेजिंग है नमल के लिए ये 6 जून को
4: जी
6: जो है मंगनोलिया बैंक्वेट हॉल में होने जा रहा है और जो भी आपके सुनने वाले हैं अगर उन्होंने टिकट नहीं लिया है या टेबल बुक नहीं की है तो वो जो है हमसे रابطہ कायम करें या हमारी टीम से रابطہ कायम करें
4: जी और यू नो बिफोर वी गो ऑन
5: समझ
4: मैग्नोलिया इज जस्ट रिनोवेटेड तो अभी उन्होंने रिनोवेट किया इट्स अ ब्यूटीफुल हॉल नाउ यू शुड गो एंड विजिट एंड ऑफ कोर्स यू कैन कम टू द इवेंट आप खुद ही देख लेंगे
5: बिल्कुल तो आपका जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है एंड आई नो आई हैव बीन टू सो मेनी तो इस दफा आपके जो टिकट्स हैं वो कहाँ से मिल सकते हैं
6: जी टिकट जो है ऑनलाइन मिल सकते हैं
5: जी
6: और क्योंकि अभी जो है जैसे पहले जमाने में हम लोग प्रिंट करते थे टिकट इस तरह नहीं है अब तरक्की कर गई है तो
5: डिजिटल
6: वर्ल्ड है तो ऑनलाइन जो है वो टिकट मिलते हैं इसके और $100 का टिकट है उसमें जो है एंटरटेनमेंट भी शामिल है डिनर भी शामिल है और वो $100 आपके जो है वो एक अच्छे कॉज के लिए जो है ना खर्च हो रहे हैं नमल यूनिवर्सिटी जो है एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि गरीब तलबा को पाकिस्तान भर से जो है वो जो जितने भी मतलब ऑलमोस्ट 93% जो है लोग जो है वो फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनको एक मौका जो है आपको पता है कि जो है इमरान खान जो उन्होंने शौकत

0: बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम टू द व्यूअर्स और ये जैसे गुल भाई ने बताया मैग्नोलिया हॉल में है जून 6 को 6:30 6:30 शाम को है और हमारे इस दफा जो गेस्ट आ रहे हैं वो है फैसल कुरैशी और जो लोग पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं वो तो बहुत फेमिलियर होंगे और मैं पढ़ी थी ही इज वन ऑफ द हाईली पेड आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान और एक्टर भी हैं होस्ट भी हैं प्रोड्यूसर भी हैं
1: आपको आपको हमारी तनख्वाह नहीं पता अभी
0: नहीं पाकिस्तान की बात
1: है पाकिस्तान में रहने वाले अच्छा अच्छा
0: जी बिल्कुल और इजाज असलम है वो जो फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं या फॉलो करते हैं ही इज अ फैशन डिजाइनर मॉडल और उनका एंटरप्रेन्योर भी है उनका अपना फैशन हाउस भी है तो इन्होंने मेरे ख्याल इकट्ठे ड्रामों में काम भी किया हुआ है जी और इनके बड़े मशहूर ड्रामे हैं कुछ इन इन लोगों के तो बड़ी फैन बेस है इधर तो वी आर एक्साइटेड टू हैव देम और बड़ा जबरदस्त इन्होंने कुछ एंटरटेनमेंट भी प्लान की हुई है हमारे व्यूअर्स के लिए तो इट विल बी एन अमेजिंग इवेंट और इट इज फॉर गुड कॉज जैसे गुल भाई ने बताया कि ये यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में है पाकिस्तान के तो अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं उन बच्चों को तो इसका मतलब है कि आप एक हाउस होल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्योंकि एक बंदे को तालीम देके इसका मतलब है उसके पूरे घर वालों को आपने खुशहाली दी है तो इट्स अ गुड कॉज सदका जारिया है बिल्कुल तो
2: और ये जो सॉरी आपको
3: नहीं नहीं नहीं
2: ये जो ये वाला जो इवेंट है ना वैसे नमल के इवेंट तो हर साल होते हैं लेकिन इस साल वाला जो इवेंट है बहुत स्पेशल है
3: वो
2: इस तरह की जो जो फर्स्ट 100 गेस्ट आएंगे पहले अपने टाइम से आएंगे 6:30 का टाइम है हम चाहते हैं कि लोग टाइम से आए
1: बहुत अच्छा
2: तो उनको 100 को गिफ्ट मिलेगा तो मैं अनाउंस नहीं कर सकता तो लेकिन वो हर एक जो आएगा उसको गिफ्ट मिलेगा
3: अच्छा
1: आई थिंक दिस इज रियली गुड कि हमारी हमारे इमेज में एक ये बहुत इशू है कि हमारे लोगों को पता है कि जल्दी जाना है लेकिन फिर भी आते नहीं है आई डोंट नो व्हाई आप जल्दी तक इवेंट जो है जल्दी शुरू हो टाइम को ताकि फिर आर्टिस्ट को भी इतना ही मौका मिले
0: पूरा एंजॉय करें
1: ताकि रश रश नहीं हो
2: बिल्कुल
1: जी जी जी
3: तो बहुत अच्छा आपने खबर सुनाई है ताकि लोग थोड़ा वक्त से आ जाएं और अब 6:30 तो वो बिल्कुल 6:30 आने चाहिए
0: बिल्कुल
3: मिलेगा
1: बाहर लाइनअप होनी चाहिए
0: और दूसरी चीज ये है कि जो टिकट्स भी जो हम सेल आउट कर रहे हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ऐसे नहीं है कि जो है इस दफा जिसने पहले टिकट ली वो आगे बैठेंगे तो इसलिए हम इतना प्रमोट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके टिकट्स लें तो इस तरह जो है
2: पहले जो है वो टेबल ड्रॉ होती थी तो लोगों को इतराज होता था अब जो है ओपन है तो जो पहले टिकट लेगा या पहले टेबल बुक करेगा तो वो उसका आगे ही नंबर आएगा
1: आगे नंबर आएगा अच्छा दिस इज नाइस तो अपना गुलगन साहब यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट नमल यूनिवर्सिटी माशाल्लाह इमरान खान का नाम उनके साथ है वहां पर हम जो है पिछले साल हम भी आए नहीं जो अटेंड कर चुके हैं वहां पर जो ऑक्शन वगैरह भी होता माशाल्लाह इमरान खान के सिग्नेचर बैग वगैरह होते तो वहां पर मैंने पिछले साल देखा था कि किसी ने बिकॉज ऑफ सिचुएशन तो वो बैट नहीं आ सके थे टाइम से लेकिन किसी ने पिछले साल का बैट डोनेट कर दिया
2: जी, जी, जी,
1: तो आती ये बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने जितने में खरीदा था वो हजारों में था
2: बिल्कुल
1: इतना दिल बड़ा है कि हमारे कैलगरियंस का इतना तो इतना दिल बड़ा है दिस इज सो नाइस ऑफ देम कि इस तरह का जेस्चर करना इससे जो दूसरों को मौका मिलता चलो बैट तो थे लेकिन जो मेन कॉज है इसको जो है फंड रेज करना और उसमें बहुत हेल्प हो जाती है
2: बिल्कुल,
1: बिल्कुल।
3: नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा कॉज है और हम चाहेंगे हम जरूर आप लोग जल्दी जल्दी से टिकट लें अब आपको पता चल गया है कि दो इंसेंटिव हैं कि आप जो पहले लेंगे उनको उनकी अच्छी जगह मिलेगी और जो टाइम से पहुंचेंगे उनको गिफ्ट भी मिलेगा दिस इज अ रियली गुड थिंग और इसका मकसद सिर्फ यही है कि जब आप लोग टाइम से आएंगे तो टाइम से प्रोग्राम शुरू होगा वरना आप मिस आउट कर जाएंगे और ये लोग का इरादा है कि दे वांट टू स्टार्ट यू नो व्हेन यू हैव सम क्राउड देयर तो दे वांट टू स्टार्ट इन टाइम एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग तो आप इनको ज्वाइन करिए टिकट लीजिए क्योंकि इट्स सच अ ग्रेट कॉज क्योंकि बच्चे जब एक कफील होता है ना एक फैमिली में से एक पढ़ लिख कर वो एक पूरी फैमिली को संभालता है तो दिस इनका मकसद यही है सब فنڈ ریز کرتے ہیں اسی اچھے کاز کے لیے کرتے ہیں تو پلیز آپ لوگ آئیے اور اس کے ٹکٹ لیجئے بینکویٹ ہال میں ہے میگنولیا بینکویٹ ہال میں 6:30

0: टाइप की प्लैटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है वगैरह वगैरह, उसकी अलग अलग कीमतें हैं। उनको जो है स्पेशल प्रिविलेज हम लोग देंगे उनको, मतलब जो है वो फोटो ऑप होगा गेस्ट के साथ, उनको साइन की भी डायरी मिलेगी और इसके अलावा जो है मतलब और भी बहुत सारी चीजें मतलब होंगी और वो बिजनेस भी उनका प्रमोट होगा और हम करेंगे।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह फैसल कुरैशी और एजाज असलम तो कर ही रहे हैं सपोर्ट, लेकिन हमारे कैलगरी के बहुत अच्छे नामवर जो बिजनेसेस हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ये हर साल फिर आते हैं क्योंकि इनको उसका वो मिलता है, उसका फायदा होता है, और नए जो बिजनेसेस हैं उनको हम बिल्कुल जरूर कहेंगे कि अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो स्पॉन्सर कर सकें। तो हमारे पास सिल्वर स्पॉन्सर्स में है प्राइम एफएक्स है, जाना माना नाम है, फहद रेस्टोरेंट है, रेंच लेंस फार्मेसी, फास्ट साइंस, कॉरपोरेटर्स फाइजा सुलेमान इंश्योरेंस है, RSPC ऑडिट टैक्स है, और मैग्नोलिया हॉल जहाँ पे इवेंट हो रहा है वो हमारे सिल्वर स्पॉन्सर्स। तो ये हमारे सिल्वर स्पॉन्सर्स हैं, और ब्रॉन्ज स्पॉन्सर्स में जिनसो है जो नया रेस्टोरेंट है हमारे पाकिस्तान का, कबाब फ्यूजन है सब जानते हैं, और इम्तियाज अहमद रियल्टर है, और सरोज इमरान रियल इस्टेट एडवाइजर है, शी इज वर्किंग विद जस्टिन हार्वर्ड ग्रुप, और ये हमारे नए स्पॉन्सर।
2: तो ये नए स्पॉन्सर वो रेस्टोरेंट क्या क्या नाम है?
1: जिनसोय
2: ये कहाँ?
1: ये नया खुला है,
2: फायदा हो रहा है उनका,
1: देख लें। हाँ जी, फर्स्ट टाइम वो कर रहे हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल और जबरदस्त।
0: कंट्री हिल पे है।
2: अच्छा,
0: जहाँ यहाँ पे ये जो प्रिंस आटोज है उसका,
2: जी जी जी जी जी, अच्छा।
0: और ये जो है कराची का जो है वो कराची से आया है एक्चुअली, क्योंकि कराची में इनकी ब्रांचें और भी हैं तो वहाँ से, और ये चाइनीज पाकिस्तानी चाइनीज है एक्चुअली,
2: हक्का
0: टाइप तो नहीं है बहरहाल, लेकिन
1: उसमें पाकिस्तानी चाइनीज।
2: देखिए हमारे रेडियो पे आने का कितना फायदा है,
1: उनका फायदा
3: है नो ये आपको, इट विल बी गुड कि आपको ये स्पॉन्सर्स मिले, और हम दुआ करेंगे कि आपको प्लैटिनम और गोल्ड भी स्पॉन्सर्स
0: मिले। जी जी, वो भी अभी पाइपलाइन में है,
1: पाइपलाइन में
0: इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे।
2: जितना मुझे पता है गुलखान साहब के बहुत कॉन्टेक्ट्स है।
3: नहीं नहीं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। देखिये मैं आपको अभी, मैं नौशीन को बता रही थी कि इतफाक से मैं 6 जून को यहाँ पर नहीं हूँ, मैं अगले हफ्ते टोरंटो जा रही हूँ, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी पेंटिंग देकर जाऊंगी।
1: अच्छा।
3: हाँ, तो फिर इंशाल्लाह आई विल समहाउ दी अदर, जाने से पहले या मैं जलाल से को दे दूंगी या कुछ भी करके मैं आप लोगों को बचा
1: कर, हर साल करती है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। लाइक ये हमारा फेवरेट आइटम होता है कि शर्मा जी की पेंटिंग
0: ऑक्शन है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और अल्लाह जो है आपको इसका अजर दे कि ये नेक काम में आप हिस्सा डालती हैं, और हम आपको मिस करेंगे कि आप नहीं होंगी।
3: मैं भी बहुत मिस कर, और आप कैन यू बिलीव इट कि आई एम मिसिंग द टोरंटो वन 13 जून का, क्योंकि मेरा जो नेफ्यू है, आप मिले थे उनसे लास्ट टाइम भी, आदिफ सिद्दीकी, तो वो आते हैं बाकायदा यहाँ पे आते हैं, तो उनको जब पता चलेगा, वो मुझे मम्मी खाला कहते हैं। अच्छा, वो कहेंगे ये मम्मी खाला जब यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ से गायब है, जब वहाँ हो रहा है तो वहाँ से आ गए। तो इत्तफाक की बात है, इस तरह हुआ है, लेकिन मैं जरूर इंशाल्लाह जाऊंगी।
2: आज का जो शो एक बार फिर से इसको स्पॉन्सर किया है कंट्री स्टोर, इनका फोन नंबर 4032901111। मोबाइल मॉर्गेज स्पेशलिस्ट रूबीना कासमल, इनका फोन नंबर 4038707069। शी वर्क्स फॉर टीडी बैंक। हमजा बट फ्रॉम द बटकड़ाही बनकट हॉल, इनका फोन नंबर 5873520094। नसीम ज्वेलर्स इन कैलरी 8259875000। एंड आइज बाय बशीर, जिसका अपना स्टोर जो इनकी जो क्लिनिक स्टोर है, एंड न्यू होराइजन मॉल 4037203937। हमारे साथ जो है नमल यूनिवर्सिटी का फंडरेजर होने जा रहे हैं, उनकी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है जून की 6 तारीख को द मैग्नोलिया बैंकेट हॉल, और डोर्स ओपन एट 6:30। फर्स्ट 100 पीपल विल गेट अ स्पेशल गिफ्ट, वो क्या है आई डोंट नो, सरप्राइज है, यू हैव टू बी देयर टू गेट इट। और इनके जो टीम मेंबर्स है गुलखान साहब एंड जो है नौशीन आसिम यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग इन। आप माशाल्लाह एवरी ईयर ये काम करते हैं, कूडोस टू योर वॉलंटियर टीम एंड कूडोस टू एवरीवन जो भी इसमें इन्वॉल्व है। आई थिंक ये काम छोटा इवेंट करना इतना मुश्किल होगा, ये तो माशाल्लाह इतना बड़ा।

0: रहा है एंड ऑफ कोर्स स्पॉन्सर आई एम श्योर यू विल गेट मोर स्पॉन्सर इंशाल्लाह और मिलेंगे ताकि ये अच्छे कॉज के लिए हो रहा है रियल आजकल रियल स्टेट जो है बूम में है काइंड ऑफ तो जो जितने हमारे रियल स्टेट के जो भाई या तो मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं आई थिंक दे आर द वन हु कैन आई थिंक दिस इज देयर चांस टू बी जो है फेमस इन कैलगरी तो इंशाल्लाह दे सपोर्ट एंड ऑफ कोर्स हमारे रेस्टोरेंट भाई जो जो हमारे रेस्टोरेंट ओन करते हैं तो दिस इज योर चांस गुलगन साहब और क्या कहेंगे
1: आपका बहुत शुक्रिया जलाल भाई
2: अरे सर
1: आपका भी बहुत शुक्रिया और जो है आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं हमें अपने प्रोग्राम्स पे बुलाते हैं और जो सुनने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको मिस ना करें ये सिर्फ खाना और इंजॉयमेंट का नहीं है ये एक नेक कॉज के लिए है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे हर जिसने टिकट नहीं लिया $100 का टिकट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है वो टिकट ले अगर कोई टेबल लेना चाहता है तो जो है $1,000 का टेबल है उसमें 10 लोग अपने दोस्तों को फैमिलीज को लेकर आए और जो स्पॉन्सर करना चाहते हैं अपने बिजनेस को तो वो स्पॉन्सर भी कर सकते हैं अगर वो ब्राउन्स जो है वो $1,000 का टेबल है उसमें 2 टिकट भी मिलती है साथ में
0: right.
1: तो आप अपनी वाइफ और बच्चे को भी ला सकते हैं और आप बिजनेस जो है उसको भी प्रमोट कर सकते हैं
0: मुझे लगता है आप बोलने वाले थे वाइफ एंड गर्लफ्रेंड
2: ऑनलाइन उनको क्या डालना होगा कि वो किस तरीके से ऑनलाइन जैसे आप कह रहे हैं तो किस तरीके से ऑनलाइन हो सकता है
1: हाँ वो जैसे नमल का जो ये ना हाँ। ये
3: नमल की ये वेबसाइट पे भी जा सकते हैं imnamal.com पे जा सकते हैं और उस पे जो है जलाल भाई के वेब पेज पे भी उन्होंने भी डाला है QR कोड और उस पे भी इन्फॉर्मेशन सारी है फोन नंबर्स भी हैं तो वहाँ से टिकट ले सकते हैं इंशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है
0: जो फैसल कुरैशी and Ejaz Aslam they are coming as well we can I'm sure you can meet them as well get your pictures as well khana bahut acha hoga from Fahad you cannot go wrong guys thank you so much
2: thank you so much
1: bahut shukriya
2: thank you all the best for the event
3: thank you so much
0: dekhiye Nashin ji aap abhi bhi join hui hai aapki kismat dekhiye aap hamare show tak pahunch gaye
3: ye dekhiye
0: aur hum kya kahe hamare liye to on drama aur acha kal ka jo show hai wo jo ki apna coffee jalal hoga It's going to be, we'll have a KWJ drama desk, जिस पर जो हम जो पाकिस्तानी ड्रामा पर हम जो कॉमेंट्री करेंगे हमारे हमारे पैनल में सलमान जी भी मौजूद है अंसा और सुहेल काशिफ भी कल यहाँ पर मौजूद होंगे so we'll talk about all about Pakistani drama, especially top 7 or top 10. तो इंशाल्लाह we'll talk tomorrow.
2: Yeah, इंशाल्लाह thank you so much. आप लोगों से कल मेरी कॉफी विद जलाल पे मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़
0: We'll see you in short tomorrow. Thank you so much for listening and watching. Salam namaskar kal ki on Radio Sasangam 94.7 FM.
4: The time is 9 p.m.
5: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट एम्पायर फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
2: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
1: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
2: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव
2: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू
1: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कनरिज बुलेवार्ड
2: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
2: छेवीं लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दिया 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
2: 403-835-2222 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है
3: रेडियो सर संगम 94.7 एफएम सुन रहे सारे श्रोतियों नूं कुलदीप सिंह वल्लों सत श्री अकाल जी अज दिन मंगलवार मई महीने की 19 तरीक सन 2026 शाम के 10 बजे तक रात के 10 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा प्रोग्राम विच पंजाब तो जतेंद्र पन्नू जी नाल असीं गलबात करांगे थोड़ी जी मौसम की गल कर लईए जी इस वेले कैलगरी विच 10-11 डिग्री सैलसीयस टैंपरेचर है कल नूं दिन वेले टैंपरेचर जिहड़ा है वह 12 डिग्री सैलसीयस ते जिस तरह का अज मौसम रहा इसे तरह का रहने की संभावना उस तो अगले दिन 18 फिर अगले दिन 19 फिर वीकेंड ते 20-21 जां 22 दे दरम्यान टैंपरेचर रहने की संभावना है जी अज दे प्रोग्राम विच असीं पंजाब तों गलबात करांगे जतेंद्र पन्नू होरां नाल कुछ पलां दे विच अज के इस प्रोग्राम सानू सहयोग दे रहे हैं जी सोनिक इंश्योरेंस तो मानस पहुजा होरी मानस होरी ट्रकों की इंश्योरेंस ते बेस्ट रेट देने का दावा करते हैं अल्बर्टा दे विच फोन नंबर है 587-8321208 5878-3212-08 दूसरे स्पॉन्सर ने जी वाई वाई सी होम केयर वीरपाल कौर होर की कंपनी घर में बजुर्गों की सांभ संभाल सेवावान दी है फोन नंबर है जी 825-760-0983 बिल सीधा सरकार को भेजेंगे वाई वाई सी होम केयर वाले मर्सिडीज़ बेंज कंट्री हिल्स कैनेडा की सब तो वड्डी डीलरशिप है तो गौरव शर्मा होरां नाल वधिया डील लैण लई तुसीं संपर्क कर सकते हो 403-903-6757 403-903-6757 पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिद्धू ते लवप्रीत सिद्धू जो लाइफ इंश्योरेंस ते सुपरविजा इंश्योरेंस दीआं सेवावां दिंदे ने फोन नंबर है 403-404-3500 बहुत भरोसेयोग सेवावां अगर तुसीं लैणियां ने ते पंजाब इंश्योरेंस ते हरपिंदर सिद्धू ते लवप्रीत सिद्धू नाल संपर्क कर सकते हो जी मदर इंडिया रेस्टोरेंट देसी घ्यो दाल सब्जियां बनाने वाला 24 घंटे खुला ए रेस्टोरेंट जिथों तुसी ए वधिया फूड खा सकते हो वैज नॉन वैज लैके आ सकते हो 24 घंटे 403-464-6666 पिक्सल फोटो स्टूडियो नॉर्थ ईस्ट कैलगरी के सवाना बाजार के पिक्सल फोटो स्टूडियो है जी जिथे पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 के विच ते नाल ए के ओ फैमिली फोटो ते बच्चों दी फोटो भी करते ने पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना बाजार नॉर्थ ईस्ट कैलगरी रेडियो सुर संगम ते समा हो गया जी के पंजाब तो गलबात शुरू करिए जतेंद्र पन्नू जी नाल ते स्वागत है जी उन्हां दा पन्नू साहब जी आ जी सत श्री अकाल
4: जी शुक्रिया कुलदीप जी सत श्री अकाल
3: पन्नू साहब कल असीं स्थानक चोणां दे बाबत गलबात कीती सी नगर निगम नगर परिषद वगैरह दी ते रौला रप्पा बहुत पिया होया उहदा ते हाई कोर्ट

0: ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਮੀ ਨੂੰ 403-617-2111 ਤੇ ਅਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 403-479-7007 ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ
1: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है किसी भी तरह की इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस RESP दिया वधिया सेवावा ले पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू ए इंश्योरेंस ले नामवर कंपनिया नाल काम करदे हन और जानकारी ले पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो
2: सोने घर की निशानी होती है शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इना दा शोरूम अज ही इना दे शोरूम ते पुछो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट एम्पायर फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी
3: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तों लैके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार
4: ग्रोसरी खरीदने लिए हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
0: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
4: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
0: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव
0: दूजी लोकेशन 117-7780
4: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड
0: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वायर
4: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
0: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
4: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
0: 403-835-2222
5: रेडियो सरसंगम 94.7 FM सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह बुलोयो फिर सत श्री अकाल जी स्वागत दूसरे हिस्से विच प्रोग्राम दे स्टेशन आईडी तों बाद 6 बजे तक साथ है ते इस प्रोग्राम विच असीं खबरां वी सांझियां करनियां ने ते प्रोग्राम विच सवाल दे सानूं जवाब भी आए होए ने जी व्हाट्सएप दे जरिए ओह वी शेयर करांगे ते प्रोग्राम विच गल्लबात पत्रकार अमीर सिंह होणा दे नाल पंजाब दे ताज़ा मुद्दियां ते चर्चा जिहड़ी है जी प्रोग्राम विच अगे चल के करांगे ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਂਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 587-832-1208 587-832-1208 ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਵਾਮਬੰਧਨ ਦੀ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ 825-760-9783 825-760-0983 YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 403-903-6757 ਤੇ 403-903-6757 ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ